0: Sridip Naran Bhagwan Ki Jai, Sri Sata Gurudeva Ki Jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

चरा चर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

elements in it. That's why it's already hops, popular hops. And later on, that tulasi is acceptable. And when you die also, the tulasi is very important. And in everyone's house, there is tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai boliye Narayan Bhagwan ki. Jai boliye Tulasi Mata ki. Jai namastu lasi kalyani namo vishnu priye suve namo moksha prade devi navasampada pradayike namastu lasi devi namo vishnu priye suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we salute the tulasi from that time continuously. She is serving this universe, many she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if you're quarantined, if your custom allow you. So take some tulasi seed with you, if you haven't already done this. And tulasi is the wonderful, it need to go everywhere. And this is for the human welfare, everyone deserves to take advantage from this divine herbs, tulasi. That's why tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And tulasi is offering to Saligram. And Saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is what is the Saligram. So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people they keep at least 5 Saligrams. So 5 Saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a 5 Saligrams. So everyone can keep in Saligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs. And also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first? Then they supply. First is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulasi in front of your a door, if in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That tulasi is oxygens, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. This tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय विष्णु भगवान की जय. जब शंखचूड़ को जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए. जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में अपति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के. उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए, पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी.
जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूर दानव भी कमजोर होने लगा। जय बोलिए भगवान नारायण की जय। तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई। जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है। तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है। इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है। तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिवजी आ गए और भोले भाले शिवजी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है, और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो, और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी, घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है, तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूर दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूर दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

की जय। बोलिए राम नारायण की जय। सो स्टिल इट मीन्स इफ यू गो टू नेपाल डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व द काली गंडकी एंड शालिग्राम एंड दैट शालिग्राम इज नाउ इन म्यूजियम ऑफ द लंडन एंड म्यूजियम इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी कंट्रीज दे आर द एक्सप्लोरिंग एंड इनोवेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड इट इज सेइंग दैट व्हेन द ओशन वॉज मूविंग दैट टाइम द प्लेट ऑफ दिस अर्थ वॉज मूविंग दैट टाइम द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स द इंसेक्ट एंड ऑल द क्रिएचर्स दे ट्रैप्ड एंड इट बिकेम द चक्र सो दैट इज इन पुराण सो देर इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑल्सो शोइंग दिस वन रिसर्च ऑल्सो शोइंग दिस वन सो इट इज सेइंग दैट इज अ क्वाइट अ सिमिलैरिटी एंड दिस स्टोरी दिस बुक्स इज रिटन हिमसेल्फ महादेव एंड लेटर ऑन वेदव्यास रोड दिस कंपाइल दिस शिव पुराण एंड ही रोड दिस थाउजेंड ईयर्स बिफोर एंड काली गंडकी ऑल्सो थाउजेंड ईयर्स बिफोर सो इट्स अ क्वाइट अ सिमिलर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड बिलीवेबल द तुलसीज एंड दिस वंडरफुल स्टोरी देर इज अ लिटिल बिट ट्रेजेडी ऑफ तुलसी बट इट इज सेइंग दैट्स गुड कॉज एंड ऑल्सो तुलसी इज वर्शिप नाउ सो व्हाट अबाउट सम अदर पुराण सो बिकॉज वी आर डेली यूजिंग तुलसी and all the Saiva, all the Vaishnava, all people, they know the Tulasi, the basil, herbs nowadays. Ayurveda accept and they are making now not only the mala, so they are making lots of Tulasi's tea and Tulasi's powder and Tulasi's some herbs and Tulasi's tablets. So that's why Tulasi is quite a bit concerned nowadays. So that's why we'd like to explain some other Puran's story as well. So in Swastani Puran, in Swastani Bratakatha, so have you heard the Swastani? In Swastani Puran, it says like, so Tulasi's origination, it talks about Tulasi. There is the story is different, but the nature is same. There was a Danava, demons, and his name is Jalandhar. So Jalandhar was a brave, brave demon. And Jalandhar's wife is Brinda. And Brinda was also a beautiful woman. He is also maintaining Pati Dharma, Pati Vrata. So, Pati Vrata or Pati Dharma. So, for man, this is Ek Nari Brahmachari. So, we were married, he is also Brahmachari, but with only one woman. So, woman also, she is also Brahmacharini, just for one husband. So, that is, so, which is very powerful, as we mentioned before. So, Brinda also maintaining that Brahmacharini. And also, Jalandhar was also, there was a very brave, but he was the demon. He always saw the demon nature. He used to go God's place, houses, and destroy the temples. And he is torturing the Mahatma, Rishi Munis, and doing so many unjust things, violence. So there was the time was a little bit difficult. And everyone went to Shivaji. And Shivaji told that, well, I cannot do anything now. Just you need to go and ask to the Vishnu. Because I gave the blessing to him and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is he need to go and worship. So Vishnu, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So, without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And when Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So, Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands years that passed away. So, but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So, ye Puran hai ki Shiv Puran mein jo aata hai ki Tulasi Mata Shaligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया. उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए. पाषाण विष्णु
क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं। ये शिव पुराण का कहानी है, शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये तुलसी ने जो शरीर देह हत्या किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वही मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी में, स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कहा कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया, और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक इन विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड व्हेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. He, my husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, he performs that, and the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's disguise appearance. And in the morning time, again the Vishnu send message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda curse, you are like the tree,
like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you, you better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़ेगा मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झार होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन. And that's why in prayer, everywhere, we use the kush grass. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isiliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur क्या है कि हम जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसीलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा, तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए, एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. दैट्स व्हाई दैट इज द ओनली

0: tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated way under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you're supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because the course of the Brinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree. And you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड पीपल वुड्स तुलसी वुड्स कुश ग्रास तुलसी वुड सो व्हेन यू डेथ डेथ आल्सो इन सिमेट्री इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल कुश तुलसी इट्स एज लाइक It will be purified your body and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit Tulasi, little bit that Panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur Tulasi ke lakdi saath mein rakhlo aur chita mein koi bhi, kisi ka bhi chita, पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है तो वो तो स्पिरिचुअली है इफ यू डोंट बिलीव अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से उससे वायुमंडल को साफ रख देता है वो गंध को दूर कर देता है इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है हवन के लिए समिधा बना देता है जय बोलिए पीपल भगवान की जय सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर हाई लेवल सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटीफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटीफुल सो इट्स एज नो मैटर व्हाट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल That's why our saint and Rishi Munis, they ate that every prayer. You need to have leaf of the Tulasi, leaf of the people, and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the Kalasa also, that we put that if you see that in the Kalasa, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, That is also Panchapallav, mango, and pipal, and aak, and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world, and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia, and some other country, Canada. Nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the tree, the people tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye people ke rukh mein dhyan karne se, people ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashasan mein aashwasan to yahi hai. और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए, आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में, उनको जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन में ही, उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह पीपल शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है, और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got, we finished many chapters today, so which is important also. We will not have time some other time to read in detail. There is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
2: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर।

0: ओम बोले श्री श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुष महादेव की जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर नाथजी गुरुदेव की जय।
1: जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स द सुस्तानी पुराण ऑल्सो द सेम थिंग एज आई मेंशन बिफोर इन इन टीचेस अस हाउ वी कैन रिमेन ऑल द टाइम इन अ डीप स्पिरिचुअल वैल्यू द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी केम इन दिस यूनिवर्स दैट फॉर अ शॉर्ट लाइफ सो इट इज सेइंग दैट इन स्काई व्हाट एवर लाइट गिव्स बाय द स्टार that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality, तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बनके, कभी विष्णु बनके और कभी शिव बनके मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा, वो हो ही नहीं सकता। ब्रह्म एक ही है, तो इसलिए ब्रह्म एक है। तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है। वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए। फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट व्हेन इट ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He is asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time, that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I mean confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha isyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, Yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak's theory is that said. But in spirituality, it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from the Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where it doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye, aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke Jalandhar ko kaisa Vishnu Bhagwan ne parasta karne ke liye Brinda ko satitva haran karna pada. Aur satitva haran karne ke baad mein unka pati dharma nasht ho gaya. Pati dharma nasht hone ke wajah se kya hai ki Jalandhar danav mar gaya. Isliye patni bich ke jo dharma hota hai wo bahut shaktishali rehta hai. Aap kahin bhi raho jaisa bhi raho ki Shankhachud danav ke liye bhi kaun thi balwan? Tulasi ka vrat tha. To aise karke फिर शिवजी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है. शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they

0: लाइन डुई, तो इनको दोनों बहनों को एक तरफ लगाओ नेक्स्ट टाइम। क्यों माता है भाई? ऐसा है कि आप या तो यहाँ से आके बैठा दो या वहाँ दो, आप दो बैठे हो तो पीछे वो लोग भलाई यूँ देखे फसा यूँ करें हैं। जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो। इसीलिए सत्संग, सत सत और संग, सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्य संग। सत सत इज द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एवरी थिंग्स। सत संग then it is said, please come with me, we stay all together, be all we together like one, yes, then it is okay, otherwise aadho sitan lag dise dud aage yu kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na, wo bada bade ka matlab wo nahi keh raha hu, main uska keh raha hu jo thoda choto aadmi hai ni, wo to baitho aage, और मोटो मोटो बैठा तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हु शुड बी हियर फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लाइक दिस, देन वी हैव ऑल। तो इसी सत, सत क्या है, वो सत कहाँ है, वो सत कहाँ से आया है। सत केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, जानवरों का भी है, वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना all children, so to all people that are everywhere, they tell to them their mother, yes mother, but where make the child, yes in my, like this, even that, then it is said yes this is very good. So child is going front and mother is behind it, taki the children can be with mother very nice and that, and not going out, then what happens is something. So sat, wo satya hota hai, satya hi sat hai, satya hi satya hai, wo hi satya kahal jaya hai, to sat sang, aur wo sang kiske hai, ki sabhi ke ek saath, sabhi ko kisar, but other one, we will go this and we're going to go sit like that. So when we come, you should come first already, where you are sitting. So, very nice. Satsang. So satsang ke baare mein ek bhajan lagao. Ek bhajan lagao satsang ka. Satsangiyon ki. Satsangiyon ki san, hai na bhajan apna? Baap ji ka hai na? हाँ तो लगाओ तो बेटा, बाप जी का माधवानंद जी का है भाई, माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, But there are city-state countries here. But a very big one are like fifth is our Hamara. So itna wo jo hai, that Watson is coming from straight far from this, where it is water. And in water there still we are our land. It's our land very much. You know that? It was that time, well, this all the Christians or Dusri Bihana, they come inside. And they took the Indians all like this. So, don't go home. No school, jana jana, kush karna nahi tha. Only those who are learning, very people. So they were like doctors and this or this. Otherwise, all people was, abhi bhi aapko le rahe hai. Abhi bhi unko barabar nahi jane dete hai. तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे ब्रॉट द ऑलरेडी टू इंडिया सो इंडिया का कितना वेरी बिग बिग बिग आई हैव नॉट सीन एवरीथिंग इंडिया इतना लंबा चौड़ा है आई वॉज नॉट गिव आई वेंट टू अदर कंट्रीज बट आई सी समबडी दिस एंड दैट बट हाउ मैनी कंट्रीज हैव देयर देयर एंड ऑल हैव डिफरेंट लैंग्वेज मैनी मैनी मैनी मैनी लैंग्वेज है भारत में लेकिन उन्होंने सब करके हिंदू हिंदू बताया और हिंदू कहाँ से हिंदू बहुत दूर से है ये क्या नहीं हिंदू कहाँ का किसको कहते हैं बताओ हाँ है नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आ गए इन लोगों ने मुसलमान आ गए खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री एंड वेट माय कंट्री दैट when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah? So I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything, and they practice here all the times. And coming, don't worry, they are not, but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So I Maheshwaranand, what do I do? I didn't do anything, now. But he is doing it for me. Yes, before I did it. But he said, I told them, but he didn't know. I have done, and what do you, what will do? And so my disciples, that everyone in the whole countries, whole world countries ki. Up they are come and made. So in government, India mein kehte hai ki Maheshwaranand hai, wo humne ko Hinduo ko isko bulaya hai, hua hai. So वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि हिंदू करो, मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोलो आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहोगे ही, वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर, दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का, वो जो है दैट इज द फर्स्ट। एंड सो माधवानंद जी ही गेंट फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट, इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas mein aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा सा ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगा हो गया यूँ से भी जगह हैं। हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मैनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास, यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें। तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है, अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है कि मैं मनुष्य हूँ, बस अब हम मनुष्य है। तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य है, मेरे देश का, तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ये प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके, लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय। श्री मारे वनंद जी सदगुरु।

अलकपुर जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।

É? Ah, wait, Hana. Wait, okay, Rauna. So now we should have, you have seen everything. Today is the best day, everything for us. And this is from the whole world, all they know. This day is what is happening and hey, good. It was from thousands of thousands of years. This is from this days and this. So the Christians or any others, they are very late. And they all are have see everything exactly. Only that they tell other name or something this. So that we are here. And then after tomorrow we will know further. Like also then the Christians apne, so they are coming also like this day like this here. Eh? Yeah, Christmas, yeah. And next day they are all coming and prasad and this and that and everything. So it is same thing is that from Christians. Many, many this and that. Muslims also, they have also day, days when, and they always, they will make very clean and very good all the times. Other people can do something, but Muslims, they will do all very good their days and their bit, and that is like this. So, but this all came from हमने इंडिया और इंडिया का मतलब मीन्स दैट ऑल द गॉड्स एंड गॉड्स विच दैट साइड वी डोंट नो व्हेन वाज इट बिकॉज सो मैनी ईयर्स ओनली वी कैन सी फ्रॉम भगवान शिवा शिवा का है ये और उसके बाद अपने विष्णु और ये आते हैं इनके बाद में राम जी भगवान राम Bhagavan Ram, he is their greatest of the greatest that they understood that what it is Bhagavan Ram. Usi ke saath saath, after come the Krishna and this all. It is coming there, Krishna and this. Ye to only about 20 jars or what is there they are doing? Huh? No. Ram, Yanaka Krishna. So they are his men. So they are also there, but they have then. So Bhagwan Krishna, to Krishna jo hai. Yeah, the Krishna, the great and very nice. And with the Krishna was his wife, she was there. Rukmani ji. So one have to, we should all, Rukmani ji, you should say the Rukmani. Now somebody have something inside, is not on how many years is only, not 100 is, and so they put it the Rudriksha or what is that? Radha. Or Radha jo hai, वो राधा तो उनकी भक्ति थी उसकी भक्ति करें उनकी भक्ति करते हैं उसके अंदर भक्ति उसकी है लेकिन अब तो वो रुक्मणी गुणी माता जो है उनका और इनका जो है राधाई तो राधाई का उन लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी नीचे डाल दिया यस धीरे धीरे सब वो इसलिए वी ऑल शुड ऑनली सेड that Bhagavan Krishna and Rukmani. Ye likha ke likho aapke upar mein, okay? Aaj today likh do every name, hamesha Bhagavan kya? Krishna aur Rukmani. Wo hi hai. Aur uske saath dusron ki hai.
सभी जाते हैं आते हैं, सबका हर प्रकार का होता है ना, तो वैसे जाएंगे, लेकिन उनको तो रुक्मिणी और इनकी कृपा है। लेकिन अब राधा जी को पता क्या, वो राहा धा है तो वो धा है उसका बराबर नहीं है, इसीलिए हम करेंगे हमेशा वापस उसी को, इनका भगवान कृष्ण और रुक्मिणी सभी लिख के देव। आपको पता ना हो ये बाटी जी रुक्मिणी, हु डोंट नो एंड वाई एंड हाउ इट इज वी विल डू इन द सत्संग, ओके, इन द सत्संग मैनी टाइम। सो भगवान कृष्ण भगवान की कृपा है उनके पास में है, और वो है उसके आगे। अब ये तो लोग करने लग दिया, इसको पता तो चलता ही नहीं है, हमारे लोगों को भी पता नहीं है कि कोई नहीं ऐसा है ही नहीं, है कि नहीं, क्यों एकदम इनको, तो अब इसको वापस उस माता को लाना चाहिए, रुक्मिणी माता को, वो है माँ, उसकी रक्षा है, उनके साथ रहना है। कर दिया सही, रुक्मिणी रुक्मिणी है ये, कौन ऐसे कर रहा है, वो ही रहना चाहिए। सो ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायण।

की देव पुरी सा महादेव की सब ऋषि मुनि महात्माओं मात पिता गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति। So

0: बोले श्रीदीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: महादेव की जय।
1: हमें है काम सत्संग से, जगत बके तो बकने दे। वी केम हियर बिकॉज द आउटसाइड वर्ल्ड इज ब्लैबरिंग ऑल द टाइम।
2: Přišli jsme sem, protože v tom vnějším světě všichni jenom žvatlají, mluví nesmysly.
1: We are

वासी ओम शलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंद ब्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद ब्रजी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत ऋषि

0: जय। श्री सिद्ध विश्वर महादेव की जय। श्री शलकुर जी महाराज की जय। हिंदू धाम समरथ सतगुरु स्वामी माधवरन जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय।
1: जय।
2: Very good. Thank you. Hari Om, everybody. Today is finished.

0: ओम्बोले श्री दीप नारायण अग्वान की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी जी महा

बड़े श्री भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री सिद्धिप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी जी सीधा पिता परम्परा की जय।

0: की जय। हिमालयन सिद्धवता सियालकपुरी जी भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: I'm practicing. Okay, make a few thousand minutes.
2: But I would
1: need
2: all
1: that. You are very good. You need to sing. Okay, then we'll sing.

अम्बले श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री सियाल पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरुदेव की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, विश्व गुरु श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

जी महादेवा की जय, श्री अलकुरीशा महादेवा की जय, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेवा की जय, महानंदलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, श्री विश्व गुरु परहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेवा की जय।